0: दिलियाली हम आला थले मेले ई खाती हाले हम आला दिलियाली खाती आला हे के थिया मेला बाती दाले वेले लो असुते बाला खडा रवाली बा हे मेले ले थिया खाती दाले सोए नवतले दे असुते बाला येशु स्वांस के नाम में भले आओ
1: वेखे मा खाती दा वे तेरे वे
0: ई हम आला के दियाले हम आ
1: तेरे वे दे दे रवाती दा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा थिलिया ले ओबन सुति वेवा स्वामी वास ओबान सी उदाउ करन ने किने केनाता

याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कन्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।